मुझे ना मैं मजदूर मनी जंगी इतनी इक्का सारी इंद्रिया का बाबी सा बोल बाबा क्या भूत भगवान के रा बतू या भूत बस निर्मल उदय बन प्रिया सुंदर भूत मिल और क्या इवन मस क्या इवन मस क्या सारा बोतल मिल और क्या इवन मस ये या इवन मस विशेषता भाइयों यारा बहुत माया करियर रहत एट माया रा बहुत यू जंगी सब जंगली सब जंगी न पालू के माया पाच лежат, я не маню на личный час. У меня есть налог, я цепи.